0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवानखाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। जापान समेत दुनिया के अक्सर मुल्कों में फादर्स डे जून की तीसरे इतवार को मनाया जाता है। आज सब अबुओं के लिए नेक तमन्नाएं।
1: वाह, मई में मदर डे और जून में फादर्स डे।
0: जी जनाब, जापान में फादर्स डे को कहते हैं चीची नो ही।
1: मदर्स डे पर तो बच्चे इजहार तशक्कुर के लिए माओं को तोहफे देते हैं, कार्ड भेजते हैं। फादर डे पर वालिद साहिबान के लिए भला क्या होता है?
0: मेरा ख्याल है उनकी खिदमात पे सिर्फ खराज तहसीनी पेश कर देना काफ़ी होगा। वैसे हमारे पाको हिंद में तो फादर्स डे नहीं मनाया जाता, इसलिए मैंने उर्दू सर्विस की जापानी रुकन ह्योरी उराता साहिबा से उस बारे में पूछा तो कहती हैं, बचपन में फादर्स डे के मौके पर स्कूल में वो लोग अपने वालिद की तस्वीर बनाते, कोई मजमून या पैगाम लिख कर बतौर तोहफा देते, और वो कहती हैं कि तब फादर्स डे के आस पास जो इतवार आता था उसको स्कूल में ओपन डे होता ताकि वालिद हजरात क्लास देखने आ सकें। वो कहती हैं अब मुआशरे में ज्यादा समाजी तब्दीलियां आने से शायद हर स्कूल में ये पहले जैसा ना हो, लेकिन उनके लिए फादर्स डे की नुमाया तरीन याद यही है।
2: देखिए, मेरे ख्याल में हर इलाके के स्कूल का अपना अपना तरीका होता है। अच्छा खलील साहब, सुना है जापान में फादर्स डे का तसव्वुर अमेरिका से आया था?
1: जी सोफिया साहिबा, सुनने में आया है कि अमेरिका से जापान में फादर्स डे का तसव्वुर लाने वाले जो साहब थे वो फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता थे।
0: जी, और जापान मेंस फैशन यूनिटी नामी तंजीम के मुताबिक ये साहब 1980 में न्यूयॉर्क में अमेरिका की फादर्स डे काउंसिल के डायरेक्टर से मिलने के बाद जापान आए तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक निजी तंजीम फादर्स डे काउंसिल जापान कायम करेंगे, और यूं 1982 से जापान में बड़े पैमाने पर फादर्स डे मनाया जाने लगा और फादर्स डे येलो रिबन कैंपेन का बाकायदा आगाज हो गया।
1: सोफिया साहिबा, वसीमा साहिबा ने तो हमें तारीख पढ़ाना शुरू कर दी है।
2: अरे भाई, तारीख का लेक्चर रोकें और फादर्स डे पर बात कुछ देर के लिए मुलतवी करके सामईन के पैगामात की तरफ आएं।
0: जी सोफिया, तारीख का सबक लेना जरूरी है। मेरी अम्मी कहती थी हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़े बेवफा, रात को याद किया सुबह को सफा।
1: याद करें और फिर भूल जाएं।
0: जी
1: ये तो याद रखिए कि अब सामीन के पैगामात का वक्त है। तो पहला पैगाम है मायरा अख्तर साहिबा का जापान के ओसाका से। मायरा साहिबा लिखती हैं कि मैं 28 मार्च 2026 को ओसाका में होने वाले पाकिस्तान कल्चरल फेस्टिवल में गई थी। वाकई बहुत अच्छा लगा। जापान की सुमो रेसलिंग और रिवायती सिंधी कुश्ती मुलाखड़ा को एक साथ देखना बड़ा दिलचस्प तजुर्बा था। बाकी कल्चरल परफॉर्मेंसेस ने भी माहौल को काफ़ी पुरजोश और रंगीन बना दिया। बतौर पाकिस्तानी दिल खुश हो गया कि हमारी सकाफत को इतने प्यारे अंदाज में दिखाया गया। बाद में NHK की उर्दू सर्विस पर इसके बारे में सुनकर लगा जैसे वो दिन फिर से याद आ गया हो।
2: मायरा अख्तर साहिबा, पैगाम का और प्रोग्राम को सराहने का शुक्रिया। हमें भी पहले तजस्सुस था कि ये मुकाबला कैसा होगा,

0: लेकिन अच्छा रहा और अब आपकी राय सुनकर हमें भी और मजा आ रहा है।
1: बहुत मजा आया था, खूब रौनक थी। और खलील साहब, इस मुकाबले से पहले सुम्मो पहलवानों ने बड़े तहम्मुल से समझाया और मुलाखड़ा वाले मल पहलवानों ने इतने शौक से सीखकर भरपूर मुकाबला किया, पूरी जान लड़ाई। उनकी दोनों की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाकई काबिले तारीफ रही।
2: अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे पास पैगाम है मुशर्रफ हुसैन शेख साहब का। लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बरसों बीत गए, NHK को हम पाबंदी से सुनना छोड़ चुके थे, लेकिन हमने NHK को याद रखा हुआ है। मैंने कुछ दिनों पहले ईमेल भेजी थी, लेकिन जवाब मौसूल नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी दिलचस्पी की कद्र करें। आपसे गुजारिश है कि फ़ोन पर रابطہ कायम करें। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी लिखा है।
0: जी मुशर्रफ साहब, पैगाम का बेहद शुक्रिया। NHK ने भी आपको याद रखा हुआ है, जैसे ही आपका पैगाम मिला उसको शामिल कर लिया है।
1: मुशर्रफ हुसैन साहब, हम आपकी दिलचस्पी की बहुत कदर करते हैं। उम्मीद है आइंदा मजीद तफसीली पैगाम भेजेंगे। हमारी वेबसाइट पर मौजूद दीगर सिलसिलों पर भी नज़र डालिए, अपनी राय रवाना कीजिए, हम मुंतजर हैं।
2: और मैं मुंतजर हूँ कि अब वसीमा साहिबा बताएं कि उनके घर में फादर डे कैसे मनाया जाता है।
1: अरे मेरे बच्चे अब बड़े हो गए, उनके बचपन की बात याद आ रही है। तो जब अभी हमने बताया जैसे कि जापान में फादर्स डे जून की तीसरी इतवार होता है, तो बच्चे स्कूल में जो कार्ड बनाते हैं, उनके स्कूल में भी रिवाज था कार्ड बनाने का, तो वो जुमे को ही ला के अब्बू को दे देते बंद लफाफा कि इसमें आपके लिए सरप्राइज है, इतवार को ही खोलिएगा।
0: प्यारे बच्चों की प्यारी बातें। और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे मौसीकी।
1: आज का गीत है फुबोका यानी अम्मी और अब्बू का गीत। इसे पेश करने वाला ग्रुप है ग्रीन। फुकुशिमा प्रिफेक्चर में तश्कील पाने वाला ग्रुप ग्रीन चार गुलकारों पर मुश्तमिल है, हिदे, नावी, कुनी और सो।
0: ये सब अराकी लाइसेंस याफ्ता डेंटिस्ट हैं, लेकिन वो अपने काम और तिब्बी देखभाल के दरमियान तवाजुन कायम रखने के लिए अपने चेहरे छुपाते हैं। उन्होंने सबसे पहले ग्रीन के नाम से डेब्यू किया, उसके बाद उन्होंने कई हिट गाने प्रोड्यूस किए
1: जैसे आई उता, किसे की, हारुका और ऑरेंज। किसे की अब भी जापान में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले सिंगल का 2015 का गिनीज रिकॉर्ड रखता है।
2: उन्होंने कई ऐसे गाने पेश किए जिन्हें जिंदगी की मुसर्रत के गीत समझा जा सकता है।
1: उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म किसे की अनोहीनो सोबितो की वजह से उनका तर्ज जिंदगी भी गुफ्तगू का मौजू बना।
0: ये फिल्म उनकी मौसीकी और कहानी दोनों पर मबनी थी। मार्च 2024 में उन्होंने ग्रुप का नाम ग्रीन से ग्रीन बॉयज में तब्दील कर दिया। लगता है कि उनकी नई सरगर्मियां मुस्तकबिल में बहुत तवज्जो का मरकज बनेंगी।
2: फुबोका गीत के बारे में बताते चलें कि ये बच्चों की परवरिश करने वाले वालदेन के शुक्रिया का गीत है। वालदेन जिनके लिए बच्चे बहुत मुश्किलात पैदा करते हैं, जैसे रात देर तक बाहर रहना और उन्हें तंग करना वगैरह।
0: लेकिन गुलकार के मुताबिक वो वाकई शुक्रगुजार हैं कि वालदेन ने उन्हें कबूल किया, और कहते हैं कि अब भी कभी कभार मैं उन्हें तंग करता हूँ, उन्हें परेशान करता रहता हूँ,
1: लेकिन कहते हैं मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा, आसपास के लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। फुबोका गीत के बोलों में है, अम्मी अबू बहुत शुक्रिया, मैं अभी भी समझदार नहीं हुआ, लेकिन आपकी सारी मोहब्बत पास रखूंगा, जिंदगी में आगे बढ़ता रहूंगा। तो आइए सुनते हैं।

0: के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं।
1: और मेरा ख्याल है वसीमा के वालिद के चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कुराहट इस स्केच से आती होगी जो उनके अपने बच्चे क्रियोन से टेढ़े मेढ़े बनाते हैं।
2: वसीमा साहिबा, बेहतरीन तोहफे की बात तो हो गई, लेकिन ये बताइए कि बेहतरीन फादर के बारे में जापान के बच्चों का तस्वीर क्या होता है?
1: यहाँ मैं औरादा साहिबा की बात बताऊंगी कि वो अपने अब्बू को सराहते हुए कहती हैं कि वो ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल करने की बजाय ऐसे शख्स हैं जिन्हें सेनाका दे कतारू कहा जाता है, यानी जो जबान की बजाय अमल से अपनी बात समझा दें।
0: वो जूनियर हाई स्कूल के दाखिला इम्तिहान की बात सुना रही थी कि जब उनके नतायज बड़ी मेहनत करने पर भी मायूस कर रहे तो वो रोई तो बा ने कहा, नतीजे की परवाह ना करें बेटी, नतीजा कुछ नहीं होता, मेहनत करेंगी तो अच्छा नतीजा ज़रूर आखिरकार सामने आएगा।
2: उराता साहब बताती हैं कि उमूमी क़दामत पसंद वालिद के बारे में सोचूं तो किसी ऐसे शख्स का तस्वीर आता है जो कहे औरत को जल्द शादी करनी चाहिए या तुम्हें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए,
0: सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में। उराता साहब कहती हैं कि उनके वालिद ने कभी भी उन पर कुछ मुसल्लत करने की कोशिश नहीं की, हमेशा उनकी पसंद का एहतराम किया।
1: और मेरा ख्याल है कि उन्हें बजा तौर पर जदीद दौर के वालिद का अवार्ड दिया जा सकता है।
2: वैसे हमारे बचपन में अब्बू तो बस अब्बू हुआ ही करते थे, शफकत से भरपूर, बस खनकार कर अपनी पसंद नापसंद बताने वाले।
0: हमारे दौर के अब्बू बड़े अच्छे थे। अब्बू तो वैसे आपको बताऊं, जापान में लगभग 40 सालों से बेस्ट फादर येलो रिबन अवार्ड भी दिए जाते हैं।
1: हाँ, जून 2026 में भी ये अवार्ड दिए जा चुके हैं।
2: अच्छा, तो बेहतरीन अब्बू का इंतखाब कौन करता है?
0: बड़ा अच्छा सवाल है। ये इंतखाब बेस्ट फादर सिलेक्शन कमेटी करती है। वो ये फैसला ज़राए इब्लाग की तंजीमों, फादर्स डे काउंसिल के अराकीन और साबिक येलो रिबन अवार्ड याफ्ता वगैरह की आरा पर मबनी सर्वे नतीज की बुनियाद पर करती है।
1: और ये बताएं कि बेहतरीन वालिद के इंतखाब का मियार होता क्या है?
0: भई ऐसे अशखास जो खुशगवार खानदानी माहौल में मजबूत और मुनज्जम तरबियत फराहम करने वाले अच्छे सामे हों, अपने बच्चों के लिए बेहतरीन मुअल्लिम हों, वालिद होने की मुस्बत तस्वीर को फरोग देने वाले हों और उनको मुख्तलिफ लिहाज से शानदार वालिद कहा जा सकता हो।
2: वैसे आपस की बात है, इन तमाम शरायत को तो सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ।
1: आपके बच्चों से पूछना चाहिए।
2: फोन मिला?
0: खैर, रवां साल पहला अवार्ड पाने वाले एक वालिद साहब की अच्छी खसूसियात में दीगर के अलावा ये बात थी कि उन्होंने 2005 में अपने तीसरे बच्चे की पैदाइश के लिए बच्चों की देखभाल के लिए खसूसी छुट्टी ली थी अपने काम से, जो उस वक्त यानी 2005 में बड़ा गैरमामूली एक बात होती थी। और एक और अब्बू साहब को इस बात पे अवार्ड मिला कि वो अपनी अहलिया के साथ घरेलू काम काज संभालते, अपनी अहलिया को ज़ाती वक्त देते और बच्चों की ज़िंदगी के अहम वाक़े जो थे इनमें शिरकत को तरजीह देते, तो इसलिए उन्हें ये अवार्ड मिला। तो सामिन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।
3: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
0: बरसरे रोजगार वालदैन के लिए कैरियर चेंज सर्विस विद वर्क चलाने वाली एक्स टैलेंट एनक्लोजर ने 2025 में 7 मई से 18 मई तक एक सर्वे करवाया, जिसमें जदीद दौर के वालिद की मिसाली तस्वीर और काम और बच्चों की देखभाल के दरमियान मिसाली तवाजुन के बारे में बात की गई।
2: सर्वे के नतायज के मुताबिक 79.9 यानी 79.9% के मुताबिक वालिद की सबसे आला मिसाली तस्वीर ये थी कि वो बच्चे की ख्वाहिशात का एहतराम करके बातचीत को अहमियत दे।
0: नंबर वन अब्बू
1: जी, और नंबर टू अब्बू हैं। 75.4% का कहना था कि बच्चे के साथ मिलकर सीखना और मिलकर बढ़ना।
0: और तीसरे नंबर पर 70.1% की राय थी अपने साथी के साथ घर के कामों और बच्चों की देखभाल में बराबर शामिल होना। ये नतायज जाहिर करते हैं कि वो वालिद जो अपने बच्चों और शरीक हयात दोनों को बराबर समझें, खानदानी जिंदगी में फाल हिस्सा लें, वो बड़े काबिल इज्जत समझे जाते हैं।
2: दूसरी तरफ ज्यादा रिवायती पिदरशाही खसूसियात जैसे घर के सरबराह के तौर पर वक़ार और इख्तियार का मुजाहरा करने की हिमायत की शरह

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 22 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। कतर और पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते पर उनकी मध्यस्थता से चल रही वार्ता में उत्साहजनक प्रगति हुई है। समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका और ईरान 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। उच्च स्तरीय वार्ता का पहला दौर रविवार से सोमवार तक स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित किया गया। मध्यस्थों द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष परमाणु मुद्दों और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित कार्यकारी बलों का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर सहमत हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने की दिशा में एक कार्य योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक संचार लाइन की स्थापना की गई है ताकि दुर्घटनाओं और गलतफहमियों से बचते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यावसायिक जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। वक्तव्य के अनुसार दोनों पक्षों ने लेबनान में सैन्य अभियानों की समाप्ति का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक संघर्ष निवारण दल बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें दोनों पक्ष और लेबनान शामिल होंगे। इसमें कहा गया है कि विस्तृत वार्ता इस सप्ताह स्विट्जरलैंड में जारी रहेगी। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, पाकिस्तान और कतर की अथक मध्यस्थता से लेबनान युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने आगे कहा कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर छूट दी गई है, समुद्री नाकाबंदी हटा ली गई है, जब्त हुई कुछ परिसंपत्तियां मुक्त कर दी गई हैं और ईरान के लिए एक बड़ी पुनर्निर्माण एवं विकास योजना शुरू की गई है। जापान का मौजूदा संसदीय सत्र समाप्त होने में एक महीने से भी कम समय रह गया है और सत्ताधारी पार्टियां इसी सत्र में प्रस्तावित विधेयक पारित कराने के लिए अपने प्रयास बढ़ाना चाहती हैं। सरकार संसद में शाही घराना कानून में संशोधन का मसौदा प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। इसमें शाही घराने के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे शामिल किए जाएंगे। मुख्य सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP और उसकी गठबंधन सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी इन विधेयकों पर संसदीय बहस में तेजी लाना चाहती हैं। दोनों पार्टियां निचले सदन में सांसदों की संख्या कम करने के उद्देश्य से एक और विधेयक भी पेश करना चाहती हैं। ये इन दोनों पार्टियों के बीच हुए गठबंधन समझौते का हिस्सा है। LDP महासचिव सुजुकी शुनइची ने संसद के मौजूदा सत्र में समय की कमी की बात स्वीकारी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्र की अवधि को बढ़ाए बिना विभिन्न मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती है। विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है कि सत्ताधारी दलों को अपनी सुविधा को प्राथमिकता देने की बजाय संसदीय बहस को

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान सरकार ने 1 जुलाई से विदेशी नागरिकों के लिए वीजा शुल्क में 5 गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी। जापान के वीजा शुल्क में लगभग 50 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया था। सिंगल एंट्री वीजा शुल्क मौजूदा 3,000 येन से बढ़ाकर 15,000 येन यानी लगभग $93 कर दिया जाएगा। निश्चित अवधि के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा शुल्क 6,000 येन से बढ़कर 30,000 येन यानी करीब $186 हो जाएगा। विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने पत्रकारों को बताया कि मौजूदा वीजा शुल्क 1978 में निर्धारित किए गए थे तथा बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव के चलते इनकी समीक्षा की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन ने रूस में करीब 2,000 किलोमीटर अंदर घुसकर तेल प्रसंस्करण संयंत्र को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने शनिवार को वीडियो संबोधन में कहा कि ये संयंत्र पश्चिमी साइबेरिया के ट्यूमेन क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि इस हमले में यूक्रेन की एक रक्षा कंपनी द्वारा विकसित उन्नत ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि ये ड्रोन 3,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने बल देते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमलों के जवाब में ये पूरी तरह से न्यायसंगत कार्रवाई थी। इससे पहले रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि यूक्रेन ने दक्षिणी क्षेत्र क्रीमिया स्थित एक तेल डिपो सहित कई ठिकानों पर हमले किए हैं। गौरतलब है कि रूस ने 2014 में क्रीमिया को एकतरफा रूप से अपने भूभाग में मिला लिया था। यूक्रेन ने बृहस्पतिवार को भी मॉस्को स्थित तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप मुकाबले में अपने ग्रुप के दूसरे मैच में जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज कर दी है। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाली जापानी टीम ग्रुप एफ के तहत शनिवार को मेक्सिको के मोंटेरी स्टेडियम में 45वीं रैंकिंग वाली ट्यूनीशियाई टीम से भिड़ी। मैच के चौथे मिनट में नाकामुरा केइतो ने बाईं ओर से गेंद को किक किया, जिसे खमादा दाइची ने अपने बाएं पैर से नेट में डालते हुए जापान को शुरुआती बढ़त दिलाई। 31वें मिनट में उएदा आयासे ने एक जोरदार मिड रेंज शॉट लगाकर हाफ टाइम से पहले जापान की बढ़त दुगनी कर दी। दूसरे हाफ में भी जापान ने खेल पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इतो जुनिया ने 69वें मिनट में एक और गोल दागा, जिसके बाद 83वें मिनट में उएदा ने दाहिनी ओर से आई गेंद को अपने सिर से मारकर जापान को चौथा गोल दिला दिया। इसके साथ ही जापान ने अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए 3 अंक हासिल किए। इससे पहले नीदरलैंड्स के साथ खेला गया मैच ड्रॉ रहा था, जिसके अंक जोड़ने के बाद एफ ग्रुप में जापानी टीम के कुल 4 अंक हो गए हैं।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कतर और पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते पर उनकी मध्यस्थता से चल रही वार्ता में उत्साहजनक प्रगति हुई है। समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका और ईरान 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। उच्च स्तरीय वार्ता का पहला दौर रविवार से सोमवार तक स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित किया गया। मध्यस्थों द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष परमाणु मुद्दों और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित कार्यकारी बलों का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर सहमत हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने की दिशा में एक कार्य योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की है।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 17वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि अभी या इन दिनों आप क्या कर रहे हैं।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया जापान के नागानो प्रिफेक्चर में तस्वीरें खींचने गई हैं। वहाँ एक ओनसेन यानी गर्म पानी का कुंड है जिसमें बंदर नहाते हैं। घूमते घूमते मिया की मुलाकात एक जापानी दंपति से हुई। वे भी वहाँ पर्यटन के लिए आए थे। सब साथ मिलकर एक सोबा रेस्तरां में खाने गए।
0: तो आइए सुनते हैं 17वें पाठ की बातचीत।
2: お蕎麦3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले जापानी महिला ने सबके लिए सोबा नूडल्स का ऑर्डर दिया।
1: तीन सोबा ले आइए।
0: फिर दुकानदार ने कहा
3: हाय
1: जी।
0: उसके बाद जापानी महिला ने मिया से पूछा
2: निहों ए वा कांको देसु का?
1: जापान में पर्यटन के लिए आई हैं?
0: मिया ने उत्तर दिया
3: वतशी वा शशिनका दे निहों नो कोतो ओ काइगाई नी शोकाई शिते इमासु।
1: मैं फोटोग्राफर हूँ, दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ।
3: सरेदे निहों वो ल्योकोस तेमस।
1: इसलिए जापान घूम रही हूँ।
0: ये सुनकर जापानी पुरुष ने कहा
4: सोरे वा सुबारशी ने।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: इतने में दुकानदार सोबा नूडल्स ले आई और मेज पर रखते हुए बोली
3: ओमोतासे शिमाशिता।
1: लीजिए।
0: घूमते फिरते समय दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिले तो अच्छा लगता है ना? आज के पाठ में आप भी दूसरों को अपने बारे में बताने का तरीका सीख सकेंगे।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: निहोंगो ग्योकोस शिटेमास,
1: यानी जापान घूम रही हूँ। ये वाक्य याद करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आप अभी या इन दिनों क्या कर रहे हैं।
0: इसमें
5: निहोंग
0: का अर्थ है जापान और
5: ग्योको शिते इमास
0: का मतलब है घूम रही हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: ग्योको शिते इमास
1: यानी घूम रही हूँ का ये मतलब भी हो सकता है कि आप अभी घूम रहे हैं या ये भी कि आप इन दिनों घूम रहे हैं। ये वाक्य बनाने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद इमास लगाते हैं।
5: ड्योको सुरु
0: यानी घूमना का ते रूप है
5: ड्योको शिते।
0: इसके बाद जोड़ गया
5: इमास
0: तो बन गया
5: ड्योको शिते इमास।
0: तो अब आप भी सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ड्योको शिते इमास निहों ओ ड्योको शिते इमास।
1: बातचीत में मिया ने कहा निहोन नो कोतो काइगाई नी शोकाई शिते इमास, यानी दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इस वाक्य में भी अभी क्या कर रहे हैं ये बताने के तरीके का ही उपयोग हुआ है।
0: इसमें
5: शोकाई शिते इमास
0: यानी बताती हूँ बनाने के लिए
5: शोकाई सुरु
0: यानी बताना के ते रूप
5: शोकाई शिते
0: के बाद जोड़ा गया है
5: इमास।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा है कि वो जापान में क्या कर रहा है।
6: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने कहा
6: ryokou desu ka?
0: घूमने आए हैं।
1: यहाँ
5: ryokou
1: एक संज्ञा है जिसका अर्थ है घूमना फिरना या यात्रा। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा
6: हाय आजकोची ryokou shite imasu।
0: जी यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
1: इस वाक्य में
5: हाय
1: का मतलब है जी और
5: अच्छी-कोची
1: का अर्थ है यहाँ वहाँ।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: और अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनने के बाद उत्तर दोहराइए।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आप जापानी भाषा सीख रहे हैं, तो इसे जापानी में कैसे बोलेंगे? जापानी भाषा के लिए शब्द है
5: निहोंगो।
0: सीखना या पढ़ाई करना को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बेंक्यो सुरु,
0: और इसका ते रूप है
5: बेंक्यो शिते।
0: तो कोशिश कीजिए।
6: निहोंगो बेंक्यो शिते इमासु।
1: अब मान लीजिए आपको कहना है कि आप काम कर रहे हैं। काम के लिए जापानी शब्द है
5: शिगोतो।
1: करना है
5: सुरु
1: और इसका ते रूप है
5: शिते।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: शिगोतो शिते इमासु।
0: अब बारी है संबंधित शब्द सीखने की, जिसमें आज हम गिनती करने के एक विशेष तरीके के बारे में बता रहे हैं।
1: इस तरीके का उपयोग ऑर्डर देते समय किया जा सकता है। आमतौर पर जापानी भाषा में एक से पांच तक की गिनती होती है इची, नी, सान, योंग और गो। लेकिन ऑर्डर देते समय इस्तेमाल की जाने वाली गिनती अलग है। आप भी सुन लीजिए एक से पांच तक की गिनती।
0: एक,
5: हितोत्सु।
0: दो,
5: फुतात्सु।
0: तीन,
5: मित्सु।
0: चार,
5: योत्सु।
0: पांच,
5: इत्सु।
1: अब ये गिनती एक बार और सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सु।
0: आज की बातचीत में महिला पर्यटक तीन सोबा नूडल्स ऑर्डर करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कहा
5: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
0: अगर दो ऑर्डर करने हो तो आप क्या बोलेंगे?
5: ओसोबा फुतात्सु ओनेगाई शिमासु।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
7: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
7: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: आज की बातचीत में सोबा नूडल्स का जिक्र था, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें हम बताएंगे सोबा यानी कुट्टू के आटे के नूडल्स के बारे में।
1: सोबा जापान के पारंपरिक और लोकप्रिय नूडल्स हैं। ये कुट्टू के आटे से बनते हैं। इन्हें आप ठंडा भी खा सकते हैं सोया सॉस वाला रसा लगाकर, या फिर गर्म भी खा सकते हैं हल्के जायके वाले सूप में डालकर।
0: जापान में सोबा नूडल्स के रेस्तरां हर जगह मिल जाते हैं। बाजारों में भी इनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं और रेलवे स्टेशनों के आसपास भी।
1: यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा की दुकानें होती हैं, जहाँ यात्री रेलगाड़ी पकड़ने से पहले जल्दी से पेट पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है

यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 22 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। कतर और पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते पर उनकी मध्यस्थता से चल रही वार्ता में उत्साहजनक प्रगति हुई है। समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका और ईरान 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। उच्च स्तरीय वार्ता का पहला दौर रविवार से सोमवार तक स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित किया गया। मध्यस्थों द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष परमाणु मुद्दों और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित कार्यकारी बलों का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर सहमत हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने की दिशा में एक कार्य योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक संचार लाइन की स्थापना की गई है ताकि दुर्घटनाओं और गलतफहमियों से बचते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यावसायिक जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। वक्तव्य के अनुसार दोनों पक्षों ने लेबनान में सैन्य अभियानों की समाप्ति का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक संघर्ष निवारण दल बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें दोनों पक्ष और लेबनान शामिल होंगे। इसमें कहा गया है कि विस्तृत वार्ता इस सप्ताह स्विट्जरलैंड में जारी रहेगी। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, पाकिस्तान और कतर की अथक मध्यस्थता से लेबनान युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने आगे कहा कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर छूट दी गई है, समुद्री नाकाबंदी हटा ली गई है, जब्त हुई कुछ परिसंपत्तियां मुक्त कर दी गई हैं और ईरान के लिए एक बड़ी पुनर्निर्माण एवं विकास योजना शुरू की गई है। जापान का मौजूदा संसदीय सत्र समाप्त होने में एक महीने से भी कम समय रह गया है और सत्ताधारी पार्टियां इसी सत्र में प्रस्तावित विधेयक पारित कराने के लिए अपने प्रयास बढ़ाना चाहती हैं। सरकार संसद में शाही घराना कानून में संशोधन का मसौदा प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। इसमें शाही घराने के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे शामिल किए जाएंगे। मुख्य सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP और उसकी गठबंधन सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी इन विधेयकों पर संसदीय बहस में तेजी लाना चाहती हैं। दोनों पार्टियां निचले सदन में सांसदों की संख्या कम करने के उद्देश्य से एक और विधेयक भी पेश करना चाहती हैं। ये इन दोनों पार्टियों के बीच हुए गठबंधन समझौते का हिस्सा है। LDP महासचिव सुजुकी शुनइची ने संसद के मौजूदा सत्र में समय की कमी की बात स्वीकारी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्र की अवधि को बढ़ाए बिना विभिन्न मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती है। विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है कि सत्ताधारी दलों को अपनी सुविधा को प्राथमिकता देने की बजाय संसदीय बहस को एहतियात से आगे बढ़ाना चाहिए। मौजूदा सत्र 17 जुलाई को समाप्त होगा।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान सरकार ने 1 जुलाई से विदेशी नागरिकों के लिए वीजा शुल्क में 5 गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी। जापान के वीजा शुल्क में लगभग 50 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया था। सिंगल एंट्री वीजा शुल्क मौजूदा 3,000 येन से बढ़ाकर 15,000

0: येन यानी लगभग 93 डॉलर कर दिया जाएगा। निश्चित अवधि के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा शुल्क 6,000 येन से बढ़कर 30,000 येन यानी करीब 186 डॉलर हो जाएगा। विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने पत्रकारों को बताया कि मौजूदा वीज़ा शुल्क 1978 में निर्धारित किए गए थे तथा बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव के चलते इनकी समीक्षा की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन ने रूस में करीब 2000 किलोमीटर अंदर घुसकर तेल प्रसंस्करण संयंत्र को निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने शनिवार को वीडियो संबोधन में कहा कि ये संयंत्र पश्चिमी साइबेरिया के ट्यूमेन क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि इस हमले में यूक्रेन की एक रक्षा कंपनी द्वारा विकसित उन्नत ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि ये ड्रोन 3,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। जेलेंस्की ने बल देते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमलों के जवाब में ये पूरी तरह से न्यायसंगत कार्रवाई थी। इससे पहले रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि यूक्रेन ने दक्षिणी क्षेत्र क्रीमिया स्थित एक तेल डिपो सहित कई ठिकानों पर हमले किए हैं। गौरतलब है कि रूस ने 2014 में क्रीमिया को एक तरफा रूप से अपने भूभाग में मिला लिया था। यूक्रेन ने बृहस्पतिवार को भी मॉस्को स्थित तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप मुकाबले में अपने ग्रुप के दूसरे मैच में जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज कर दी है। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाली जापानी टीम ग्रुप एफ के तहत शनिवार को मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में 45वीं रैंकिंग वाली ट्यूनीशियाई टीम से भिड़ी। मैच के चौथे मिनट में नाकामुरा केइतो ने बाईं ओर से गेंद को किक किया, जिसे खमादा दाइची ने अपने बाएं पैर से नेट में डालते हुए जापान को शुरुआती बढ़त दिलाई। 31वें मिनट में उएदा आयासे ने एक जोरदार मिड रेंज शॉट लगाकर हाफ टाइम से पहले जापान की बढ़त दुगनी कर दी। दूसरे हाफ में भी जापान ने खेल पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इतो जुनिया ने 69वें मिनट में एक और गोल दागा, जिसके बाद 83वें मिनट में उएदा ने दाहिनी ओर से आई गेंद को अपने सिर से मारकर जापान को चौथा गोल दिला दिया। इसके साथ ही जापान ने अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए 3 अंक हासिल किए। इससे पहले नीदरलैंड्स के साथ खेला गया मैच ड्रॉ रहा था, जिसके अंक जोड़ने के बाद एफ ग्रुप में जापानी टीम के कुल 4 अंक हो गए हैं।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कतर और पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते पर उनकी मध्यस्थता से चल रही वार्ता में उत्साहजनक प्रगति हुई है। समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका और ईरान 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। उच्च स्तरीय वार्ता का पहला दौर रविवार से सोमवार तक स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित किया गया। मध्यस्थों द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष परमाणु मुद्दों और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित कार्यकारी बलों का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर सहमत हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने की दिशा में एक कार्य योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की है।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 17वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि अभी या इन दिनों आप क्या कर रहे हैं।

0: चीनी फोटोग्राफर मिया जापान के नागानो प्रिफेक्चर में तस्वीरें खींचने गई हैं। वहाँ एक ओनसेन यानी गर्म पानी का कुंड है जिसमें बंदर नहाते हैं। घूमते घूमते मिया की मुलाकात एक जापानी दंपति से हुई। वे भी वहाँ पर्यटन के लिए आए थे। सब साथ मिलकर एक सोबा रेस्तरां में खाने गए।
1: तो आइए सुनते हैं 17वें पाठ की बातचीत।
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले जापानी महिला ने सबके लिए सोबा नूडल्स का ऑर्डर दिया।
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
0: तीन सोबा ले आइए।
1: फिर दुकानदार ने कहा,
3: हाय।
0: जी।
1: उसके बाद जापानी महिला ने मिया से पूछा,
2: निहों ए वा कांको देसु का?
0: जापान में पर्यटन के लिए आई हैं।
1: मिया ने उत्तर दिया,
3: वतशी वा शशिनका दे निहों नो कोतो ओ काइगाई नी शोकाई शिटेइमासु।
0: मैं फोटोग्राफर हूँ, दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ।
3: それで日本を旅行しています。
0: इसलिए जापान घूम रही हूँ।
1: ये सुनकर जापानी पुरुष ने कहा,
4: それは素晴らしいね。
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: इतने में दुकानदार सोबा नूडल्स ले आई और मेज पर रखते हुए बोली,
3: お待たせしました。
0: लीजिए।
1: घूमते फिरते समय दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिले तो अच्छा लगता है ना? आज के पाठ में आप भी दूसरों को अपने बारे में बताने का तरीका सीख सकेंगे।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: निहों वो ल्योकों शिटेइमास,
0: यानी जापान घूम रही हूँ। ये वाक्य याद करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आप अभी या इन दिनों क्या कर रहे हैं।
1: इसमें
5: निहों
1: का अर्थ है जापान और
5: ड्योको शिटेइमास
1: का मतलब है घूम रही हूँ।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: ड्योको शिटेइमास
0: यानी घूम रही हूँ का ये मतलब भी हो सकता है कि आप अभी घूम रहे हैं या ये भी कि आप इन दिनों घूम रहे हैं। ये वाक्य बनाने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद इमास लगाते हैं।
5: ड्योको सुरु
1: यानी घूमना का ते रूप है
5: ड्योको शिते।
1: इसके बाद जुड़ गया
5: इमास
1: तो बन गया
5: ड्योको शिते इमास।
1: तो अब आप भी सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ड्योको शिते इमास निहों वो ड्योको शिते इमास।
0: बातचीत में मिया ने कहा, निहोन नो कोतो काइगाई नी शोकाई शिटेइमास, यानी दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इस वाक्य में भी अभी क्या कर रहे हैं ये बताने के तरीके का ही उपयोग हुआ है।
1: इसमें
5: शोकाई शिटेइमास
1: यानी बताती हूँ बनाने के लिए
5: शोकाई सुरु
1: यानी बताना के ते रूप
5: शोकाई शिते
1: के बाद जोड़ा गया है
5: इमास।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा है कि वो जापान में क्या कर रहा है।
6: ड्योको देसु का? हाई, आचकोची ड्योको शिटेइमास।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने कहा,
6: ड्योको देसु का?
1: घूमने आए हैं।
0: यहाँ
5: ड्योको
0: एक संज्ञा है जिसका अर्थ है घूमना फिरना या यात्रा। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
6: हाय, आचकोची ड्योको शिटेइमास।
1: जी, यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
0: इस वाक्य में
5: हाय
0: का मतलब है जी और
5: आचकोची
0: का अर्थ है यहाँ वहाँ।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
5: ड्योको शिटेइमास आचकोची ड्योको शिटेइमास।
0: और अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनने के बाद उत्तर दोहराइए.
5: ल्योको देसु का? हाई, अचिकोची ल्योको शिते इमासु.
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आप जापानी भाषा सीख रहे हैं, तो इसे जापानी में कैसे बोलेंगे? जापानी भाषा के लिए शब्द है
5: निहोंगो.
1: सीखना या पढ़ाई करना को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बेंक्यो सुरु,
1: और इसका ते रूप है
5: बेंक्यो शिते.
1: तो कोशिश कीजिए.
0: अब मान लीजिए आपको कहना है कि आप काम कर रहे हैं. काम के लिए जापानी शब्द है
5: शिगोतो.
0: करना है
5: सुरु,
0: और इसका ते रूप है
5: शिते.
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए.
5: शिगोतो शिते इमास.
1: अब बारी है संबंधित शब्द सीखने की, जिसमें आज हम गिनती करने के एक विशेष तरीके के बारे में बता रहे हैं.
0: इस तरीके का उपयोग ऑर्डर देते समय किया जा सकता है. आमतौर पर जापानी भाषा में एक से पांच तक की गिनती होती है इची, नी, सान, योंग और गो. लेकिन ऑर्डर देते समय इस्तेमाल की जाने वाली गिनती अलग है. आप भी सुन लीजिए एक से पांच तक की गिनती.
1: एक,
5: हितोत्सु.
1: दो,
5: फुतात्सु.
1: तीन,
5: मित्सु.
1: चार,
5: योत्सु.
1: पांच,
5: इत्सु.
0: अब ये गिनती एक बार और सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए.
5: हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सु.
1: आज की बातचीत में महिला पर्यटक तीन सोबा नूडल्स ऑर्डर करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कहा
5: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमास.
1: अगर दो ऑर्डर करने हो तो आप क्या बोलेंगे?
5: ओसोबा फुतात्सु ओनेगाई शिमास.
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं.
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमास.
7: はい。
2: 日本へは観光ですか？
7: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
7: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: आज की बातचीत में सोबा नूडल्स का जिक्र था, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें हम बताएंगे सोबा यानी कुट्टू के आटे के नूडल्स के बारे में.
0: सोबा जापान के पारंपरिक और लोकप्रिय नूडल्स हैं. ये कुट्टू के आटे से बनते हैं. इन्हें आप ठंडा भी खा सकते हैं सोया सॉस वाला रसा लगाकर, या फिर गर्म भी खा सकते हैं हल्के जायके वाले सूप में डालकर.
1: जापान में सोबा नूडल्स के रेस्तरां हर जगह मिल जाते हैं. बाजारों में भी इनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं और रेलवे स्टेशनों के आसपास भी.
0: यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा की दुकानें होती हैं, जहाँ यात्री रेलगाड़ी पकड़ने से पहले जल्दी से पेट पूजा कर सकते हैं. दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा.
1: अगले पाठ में मिया हारुसान हाउस के बाकी निवासियों को अपनी यात्रा के बारे में बताएगी. तब तक के लिए
0: सायोनारा.

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी हुकूमत ने 1 जुलाई से गैर मुल्की शहरियों के लिए वीजा फीस 5 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। हुकूमत ने जुमे के रोज काबीना इजलास में इस नजरसानी की मंजूरी दी। वीजा जारी करने की मुल्की फीसों में तकरीबन 50 साल से कोई तब्दीली नहीं की गई थी। सिंगल एंट्री वीजा फीस मौजूदा 3,000 येन से बढ़कर 15,000 येन या तकरीबन $93 हो जाएगी। मल्टीपल यानी मुकर्रा मुद्दत में मुतअद्दिद बार जापान आने की इजाज़त के हामिल वीजों के इजरा की फीस 6,000 येन से बढ़ाकर 30,000 येन या तकरीबन $186 कर दी जाएगी। वजीर खारजा मोतेगी तोशीमित्सू ने नामानिगारों को बताया कि मौजूदा वीजा फीसें 1978 में मुकर्रर की गई थी और कीमतों में इजाफे और गैर मुल्की करेंसी की शराय मुबादला में तब्दीलियों के जवाब में इन पर नजरसानी की गई है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि उनके मुल्क के ड्रोन हमले ने सरहद से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर रूस की एक तेल तंसीब को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज एक वीडियो खिताब में कहा कि यह तंसीब मगरबी साइबेरियाई खित्ते ट्यूमेन में वाके है। सदर ने इंकशाफ किया कि हमले में यूक्रेन की दिफाई कंपनी के तैयार करदा अपग्रेडेड ड्रोन शामिल थे। उन्होंने कहा कि बगैर पायलट की ये फजाई गाड़ियां 3,000 किलोमीटर दूर हदफ तक पहुंच सकती हैं। ज़ेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यह हमला यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों का मुकम्मल जायज जवाब था। उन्होंने इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी ऐलान किया कि यूक्रेन ने जनूबी खित्ते क्रीमिया में तेल के डिपू समेत आदाफ को निशाना बनाया। रूस ने 2014 में यकतरफा तौर पर इस खित्ते को अपने साथ मिला लिया था। यूक्रेन ने जुमरात को मॉस्को में एक ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया था। जापान की टीम ने मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप मरहले के दूसरे मैच में ट्यूनिस के खिलाफ 0-0 में 4 गोल से शानदार फतह हासिल कर ली। हफ्ते के रोज मेक्सिको के मोंटेरी स्टेडियम में शुरू होने वाले ग्रुप एफ के खेल में जापानी टीम, जो आलमी रैंकिंग में 18वें नंबर पर है, उसका मुकाबला 45वें नंबर की ट्यूनिस की टीम से हुआ। चौथे मिनट में नाकामुरा केतो ने बाएं जानिब से गेंद को क्रॉस किया और कामादा दाइची ने उसे अपने बाएं पांव से गोल में डालकर जापान को इब्तदाई बर्तरी दिला दी। 31वें मिनट में उवेदा आयासे ने दरमियानी फासले के एक ताकतवर शॉट के जरिए हाफ टाइम से पहले जापान की बर्तरी को दुगना कर दिया। जापान ने दूसरे हाफ में भी खेल पर गिरफ्त बरकरार रखी। इतो जूनिया ने 69वें मिनट में एक और गोल किया। फिर उवेदा ने 83वें मिनट में दाएं जानिब से क्रॉस पर हेड करके जापान की जानिब से चौथा गोल कर दिया। जापान 3 पॉइंट्स हासिल करके पहली बार जीत गया है। इस तरह नेदरलैंड के खिलाफ मैच ड्रॉ होने के बाद जापानी टीम के इस ग्रुप में मजमूई तौर पर 4 पॉइंट्स हो गए हैं।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। कतर और पाकिस्तान के मुताबिक उन मुजाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है जो उन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई के खात्मे के मुआहदे पर सालिसी के लिए किए हैं। मफाहमत की एक याददाश्त के तहत अमरीका और ईरान ने 60 दिनों के अंदर किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुजाकरात पर इत्तफाक किया है। आला सतह मुजाकरात का पहला दौर स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में इतवार से पीर तक मुनक्किद हुआ। सालिसों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मुजाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इसमें कहा गया है कि फ्रीकैन ने जोहरी मसाइल और ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर तवज्जो मरकूज करने वाले अमली ग्रुपों की क्यादत के लिए आला सतही कमेटी के क्याम पर इत्तफाक किया। और जापान की हुक्मरान जमातें पॉलिसी एजेंडे को अमली जामा पहनाने की कोशिशें दुगना करने का इरादा रखती हैं, क्योंकि पार्लिमानी इजलास खत्म होने में वक्त कम रह गया है। जापानी हुकूमत ने 1 जुलाई से गैर मुल्कियों के लिए वीजा फीस 5 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। खबरें खत्म हुईं।

0: それで日本を旅行しています。
1: इसलिए मैं जापान भर में सफर कर रही हूं।
2: खातून का शौहर कहता है,
3: それは素晴らしいね。
1: ये तो बहुत शानदार बात है।
2: इनकी गुफ्तगू के दौरान बावर्ची सोबा तैयार कर रहा था। जैसे ही सोबा तैयार हुए, वेटर्स उन्हें मेज पर लाई और कहा,
4: ओमोतासे शिमाशिता।
1: इंतजार के लिए माजरत, ये लीजिए।
2: सफर के दौरान मिलने वाले लोगों से गुफ्तगू करना वाकई दिलचस्प होता है।
1: बिल्कुल, और आज के मकालमे को इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने बारे में बताया जा सकता है। इस तरह गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
2: आज के सबक का कलीदी जुमला है, मैं जापान का सफर कर रहा हूँ। अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं।
1: निहोन के मायने तो आपको याद ही होंगे जापान, और ryokoshiteimas यानी सफर कर रहा हूँ। आज का नुक्ता ryokoshiteimas यानी सफर कर रहा हूँ, हालिया जारी काम के बारे में बताने के लिए फेल की तेशकल के बाद इमस लगाया जाएगा। ryokoshiru यानी सफर करना की तेशकल है ryokoshite, इसके बाद इमस लगाने से ये बनेगा ryokoshiteimas।
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए। आज के मकालमे का एक जुमला निहोन नो कोतो खाई गई नी शोका इश्तेमास, यानी मैं जापान को बैरून मुल्क मुतारिफ करवा रही हूँ, भी इसी अंदाज का जुमला है, जिसके जरिए अपनी हालिया सरगर्मियों के बारे में बताया जा सकता है।
1: जी हाँ, शोका इश्तेमास यानी मुतारिफ करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ। दरअसल फेल शोकाई सुरु यानी मुतारिफ करवाना की ते शकल शोका इश्ते के बाद इमास लगाकर बनाया गया है। अब जापान में अपनी सरगर्मियों के बारे में बताने वाला एक मकालमा सुनिए।
5: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
1: और अब मकालमे की तशरीह।
5: ryokou desu ka?
2: क्या आप सफर कर रहे हैं?
1: ryokou एक इस्म है जिसके मायने है सैयाहती या तफरीही सफर।
5: Hai. Achikochi ryokou shite imasu.
2: जी हाँ, इधर उधर सफर कर रहा हूँ।
1: हाई यानी जी हाँ, और अच्छी कोची के मायने है इधर उधर।
2: तो सामीन सुनिए और दोहराइए। सामीन अब मुकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
6: ryokou desu ka? Hai. Achikochi ryokou shite imasu. Hai.あちこち旅行しています。
1: आप जापान में मजीद जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बताने की मशक कीजिए। मसलन आप जापानी जबान सीख रहे हैं तो ये बात आप कैसे बताएंगे? जापानी जबान को कहते हैं
6: निहोंगो। निहोंगो
1: सीखना की जापानी है बेंक्यो सुरु, और उसकी ते शकल है
6: बेंक्यो शिते। बेंक्यो शिते
5: Nihongo benkyou shite imasu. Nihongo benkyou shite imasu.
1: और अगर आप काम कर रहे हो तो कैसे बताएंगे? काम को जापानी में कहते हैं
6: shigoto. Shigoto.
1: करना की जापानी है suru, और इसकी ते शकल है
6: shite. Shite.
1: तो सामीन कोशिश करें।
7: Shigoto shite imasu.仕事をしています。
1: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम गिनती का एक खुसूसी तरीका बता रहे हैं।
2: जापान में कोई चीज ऑर्डर करते वक्त आम गिनती यानी इची नी सान इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये गिनती इस्तेमाल होती है
1: एक, हितोत्सु, दो, फ्तात्सु, तीन, मित्सु, चार, योत्सु, पांच, इत्सुत्सु।
2: एक से पांच तक ये गिनती दोबारा सुनिए और दोहराइए।
6: हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु।
1: आज के मकालमे में सैयाह जोड़े की खातून ने तीन अफराद के लिए सोबा नूडल्स का यूं ऑर्डर दिया था, ओ सोबा मित्सु ओ नेगाई शिमास। अगर आप दो सोबा मंगवाना चाहें तो किस तरह कहेंगे?
6: ओसोबा फुतात्सु ओनेगाई शिमासु।
2: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
1: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए।

0: お蕎麦3つお願いします。
1: はい。
0: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: アラブカーニック商品カイトケマシュルンカカーナーアシカモズソバヘ。
6: ソバジャパンケーキマクブルリバイティカナヘ。ソバノードルセアガンドムケアテセテヤーキエジャテヘ。イネオバルカソヤソースワレテンデスープンディボーカーヤーケザイフェワリガムヤニケペアリメダルカカヤジャテヘ。ウェセヘラジャパンアカアプリソバノードルトヤキニンカイオンゲ。
5: ジヤキニン。テンプラバリソバノードルズムジボハッパサンデン。वैसे जापान में जगह जगह सोबा रेस्टोरेंट पाए जाते हैं। तकरीबन हर शॉपिंग मॉल में कई होते हैं। इसके अलावा ये अक्सर ट्रेन स्टेशनों के करीब भी होते हैं,
6: बल्कि कई रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा रेस्टोरेंट होते हैं, जहां मुसाफिर ट्रेन के इंतजार के दौरान सोबा खा सकते हैं।
5: अच्छा अनवर साहब, सोबा के हवाले से एक बात बहुत हैरत अंगेज है।
6: अच्छा वो क्या?
5: जापानी लोग सुरप सुरप की आवाज के साथ सोबा नूडल्स को मुँह में खींचते हैं। अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, लेकिन शुरू में मुझे आवाज़ बहुत अजीब लगती थी।
6: जी, ये बात अक्सर गैर मुल्कियों को अजीब लगती है, लेकिन जापान में सोबा खाने का यही दुरुस्त अंदाज है। दरअसल इस तरह खींचने से नूडल्स के साथ कुछ हवा भी मुंह के अंदर दाखिल होती है, जिससे सोबा के जायके के साथ साथ इसकी खुशबू से भी ज्यादा लुत्फंदोज हुआ जा सकता है।
5: अच्छा, तो फिर अगली बार मैं भी इसी तरह खाने की कोशिश करूंगी।
6: मियाँ, जिस इलाके में गई थी वो इलाका यानी नागानो प्रीफेक्चर सोबा की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद इलाका है। ये सतह समंदर से बुलंद ठंडा इलाका है। वहाँ कई सोबा रेस्तरां कदीम अंदाज के घरों में है, जिससे एक रिवायती सा तासुर पैदा होता है। बाज़ रेस्तरानों में करीबी देहातों में रहायश पज़ीर बुजुर्गों के हाथ से तैयार करदा सोबा नूडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कई रेस्तरान शहरी इलाकों से वहां आने वाले अफराद चला रहे हैं। नूडल्स की तैयारी के लिए अज्जा और पानी का इंतखाब इंतहाई एहतियात के साथ किया जाता है। हर रेस्तरान का सोबा बनाने का अपना मुनफरद तरीका है। अगर आपको उस इलाके में जाने का मौका मिले तो मुख्तलिफ रेस्तरानों के सोबा से लुत्फ़अंदोज़ होना एक अच्छा तजर्बा होगा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 22 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। कतर और पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते पर उनकी मध्यस्थता से चल रही वार्ता में उत्साहजनक प्रगति हुई है। समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका और ईरान 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। उच्च स्तरीय वार्ता का पहला दौर रविवार से सोमवार तक स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित किया गया। मध्यस्थों द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष परमाणु मुद्दों और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित कार्यकारी बलों का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर सहमत हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने की दिशा में एक कार्य योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक संचार लाइन की स्थापना की गई है ताकि दुर्घटनाओं और गलतफहमियों से बचते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यावसायिक जहाजों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। वक्तव्य के अनुसार दोनों पक्षों ने लेबनान में सैन्य अभियानों की समाप्ति का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक संघर्ष निवारण दल बनाने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिसमें दोनों पक्ष और लेबनान शामिल होंगे। इसमें कहा गया है कि विस्तृत वार्ता इस सप्ताह स्विट्जरलैंड में जारी रहेगी। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, पाकिस्तान और कतर की अथक मध्यस्थता से लेबनान युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने आगे कहा कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर छूट दी गई है, समुद्री नाकाबंदी हटा ली गई है, जब्त हुई कुछ परिसंपत्तियां मुक्त कर दी गई हैं और ईरान के लिए एक बड़ी पुनर्निर्माण एवं विकास योजना शुरू की गई है। जापान का मौजूदा संसदीय सत्र समाप्त होने में एक महीने से भी कम समय रह गया है और सत्ताधारी पार्टियां इसी सत्र में प्रस्तावित विधेयक पारित कराने के लिए अपने प्रयास बढ़ाना चाहती हैं। सरकार संसद में शाही घराना कानून में संशोधन का मसौदा प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। इसमें शाही घराने के सदस्यों की संख्या सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे शामिल किए जाएंगे। मुख्य सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP और उसकी गठबंधन सहयोगी जापान इनोवेशन पार्टी इन विधेयकों पर संसदीय बहस में तेजी लाना चाहती हैं। दोनों पार्टियां निचले सदन में सांसदों की संख्या कम करने के उद्देश्य से एक और विधेयक भी पेश करना चाहती हैं। ये इन दोनों पार्टियों के बीच हुए गठबंधन समझौते का हिस्सा है। LDP महासचिव सुजुकी शुनइची ने संसद के मौजूदा सत्र में समय की कमी की बात स्वीकारी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्र की अवधि को बढ़ाए बिना विभिन्न मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती है। विपक्षी दलों के सांसदों का कहना है कि सत्ताधारी दलों को अपनी सुविधा को प्राथमिकता देने की बजाय संसदीय बहस को एहतियात से आगे बढ़ाना चाहिए। मौजूदा सत्र 17 जुलाई को समाप्त होगा।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान सरकार ने 1 जुलाई से विदेशी नागरिकों के लिए वीजा शुल्क में 5 गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया है। सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी। जापान के वीजा शुल्क में लगभग 50 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया था। सिंगल एंट्री वीजा शुल्क मौजूदा 3,000 येन से बढ़ाकर 15,000 येन यानी लगभग $93 कर दिया जाएगा। निश्चित अवधि के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा शुल्क 6,000 येन से बढ़कर 30,000 येन यानी करीब $186 हो जाएगा। विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने पत्रकारों को बताया कि मौजूदा वीजा शुल्क 1978 में निर्धारित किए गए थे तथा बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव के चलते इनकी समीक्षा की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन ने रूस में करीब 2,000 किलोमीटर अंदर घुसकर तेल प्रसंस्करण संयंत्र को निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने शनिवार को वीडियो संबोधन में कहा कि ये संयंत्र पश्चिमी साइबेरिया के ट्यूमेन क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रपति ने खुलासा किया कि इस हमले में यूक्रेन की एक रक्षा कंपनी द्वारा विकसित उन्नत ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने बताया कि ये ड्रोन 3,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं। जेलेंस्की ने बल देते हुए कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमलों के जवाब में ये पूरी तरह से न्यायसंगत कार्रवाई थी। इससे पहले रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि यूक्रेन ने दक्षिणी क्षेत्र क्रीमिया स्थित एक तेल डिपो सहित कई ठिकानों पर हमले किए हैं। गौरतलब है कि रूस ने 2014 में क्रीमिया को एकतरफा रूप से अपने भूभाग में मिला लिया था। यूक्रेन ने बृहस्पतिवार को भी मॉस्को स्थित तेल रिफाइनरी पर हमला किया था। पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप मुकाबले में अपने ग्रुप के दूसरे मैच में जापान ने ट्यूनीशिया को 4-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज कर दी है। विश्व में 18वीं रैंकिंग वाली जापानी टीम ग्रुप एफ के तहत शनिवार को मैक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में 45वीं रैंकिंग वाली ट्यूनीशियाई टीम से भिड़ी। मैच के चौथे मिनट में नाकामुरा केइतो ने बाईं ओर से गेंद को किक किया, जिसे खमादा दाइची ने अपने बाएं पैर से नेट में डालते हुए जापान को शुरुआती बढ़त दिलाई। 31वें मिनट में उएदा आयासे ने एक जोरदार मिड रेंज शॉट लगाकर हाफ टाइम से

0: पहले जापान की बढ़त दुगनी कर दी। दूसरे हाफ में भी जापान ने खेल पर अपनी पकड़ बनाए रखी। इतो जुनिया ने 69वें मिनट में एक और गोल दागा, जिसके बाद 83वें मिनट में उएदा ने दाहिनी ओर से आई गेंद को अपने सिर से मारकर जापान को चौथा गोल दिला दिया। इसके साथ ही जापान ने अपनी पहली जीत दर्ज करते हुए 3 अंक हासिल किए। इससे पहले नीदरलैंड्स के साथ खेला गया मैच ड्रॉ रहा था, जिसके अंक जोड़ने के बाद एफ ग्रुप में जापानी टीम के कुल 4 अंक हो गए हैं।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कतर और पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका ईरान संघर्ष समाप्ति समझौते पर उनकी मध्यस्थता से चल रही वार्ता में उत्साहजनक प्रगति हुई है। समझौता ज्ञापन के तहत अमेरिका और ईरान 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। उच्च स्तरीय वार्ता का पहला दौर रविवार से सोमवार तक स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में आयोजित किया गया। मध्यस्थों द्वारा जारी एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में संपन्न हुई। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों पक्ष परमाणु मुद्दों और ईरान पर प्रतिबंधों से संबंधित कार्यकारी बलों का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर सहमत हुए। वक्तव्य में कहा गया है कि समिति ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता करने की दिशा में एक कार्य योजना बनाने पर सहमति व्यक्त की है।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 17वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि अभी या इन दिनों आप क्या कर रहे हैं।
1: चीनी फोटोग्राफर मिया जापान के नागानो प्रिफेक्चर में तस्वीरें खींचने गई हैं। वहां एक ओनसेन यानी गर्म पानी का कुंड है जिसमें बंदर नहाते हैं। घूमते घूमते मिया की मुलाकात एक जापानी दंपति से हुई। वे भी वहां पर्यटन के लिए आए थे। सब साथ मिलकर एक सोबा रेस्तरां में खाने गए।
0: तो आइए सुनते हैं 17वें पाठ की बातचीत।
2: おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले जापानी महिला ने सबके लिए सोबा नूडल्स का ऑर्डर दिया।
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
1: तीन सोबा ले आइए।
0: फिर दुकानदार ने कहा,
3: हाय।
1: जी।
0: उसके बाद जापानी महिला ने मिया से पूछा,
2: निहों ए वा कांको देस का?
1: जापान में पर्यटन के लिए आई हैं?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: वतशी वा शशिनका दे निहों नो कोतो काइगाई नी शोकाई शितेमासु।
1: मैं फोटोग्राफर हूँ, दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ।
3: सरेदे निहों वो ल्योकोस तेमस।
1: इसलिए जापान घूम रही हूँ।
0: ये सुनकर जापानी पुरुष ने कहा,
4: सोरे वा सुबारशी ने।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: इतने में दुकानदार सोबा नूडल्स ले आई और मेज पर रखते हुए बोली,
3: ओमोतासे शिमाशिता।
1: लीजिए।
0: घूमते फिरते समय दूसरे लोगों से बात करने का मौका मिले तो अच्छा लगता है ना? आज के पाठ में आप भी दूसरों को अपने बारे में बताने का तरीका सीख सकेंगे।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: निहों वो ल्योकोस तेमस,
1: यानी जापान घूम रही हूँ। ये वाक्य याद करके आप दूसरों को बता सकेंगे कि आप अभी या इन दिनों क्या कर रहे हैं।
0: इसमें
5: निहों
0: का अर्थ है जापान और
5: ड्योको शिते इमस
0: का मतलब है घूम रही हूँ।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि
5: ड्योको शिते इमस
1: यानी घूम रही हूँ का ये मतलब भी हो सकता है कि आप अभी घूम रहे हैं या ये भी कि आप इन दिनों घूम रहे हैं। ये वाक्य बनाने के लिए क्रिया के ते रूप के बाद इमास लगाते हैं।
5: ड्योको सुर
0: यानी घूमना का ते रूप है
5: ड्योको शिते।
0: इसके बाद जोड़ गया
5: इमास
0: तो बन गया
5: ड्योको शिते इमास।
0: तो अब आप भी सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ड्योको शिते इमास निहों वो ड्योको शिते इमास।
1: बातचीत में मिया ने कहा, निहोन नो कोतो काइगाई नी शोकाई शिते इमास, यानी दूसरे देशों के लोगों को जापान के बारे में बताती हूँ। इस वाक्य में भी अभी क्या कर रहे हैं ये बताने के तरीके का ही उपयोग हुआ है।
0: इसमें
5: शोकाई शिते इमास
0: यानी बताती हूँ बनाने के लिए
5: शोकाई सुरु
0: यानी बताना के ते रूप
5: शोकाई शिते
0: के बाद जोड़ा गया है
5: इमास।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक आदमी बता रहा है कि वो जापान में क्या कर रहा है।
6: ड्योको देसु का? हाई, आचकोची ड्योको शिते इमास।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले आदमी ने कहा,
6: ड्योको देसु का?
0: घूमने आए हैं।
1: यहाँ
5: ड्योको
1: एक संज्ञा है जिसका अर्थ है घूमना फिरना या यात्रा। जवाब में दूसरे आदमी ने कहा,
6: हाय, आचकोची ड्योको शिते इमास।
0: जी यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ।
1: इस वाक्य में
5: हाय
1: का मतलब है जी और
5: अच्छी-कोची
1: का अर्थ है यहाँ वहाँ।
0: तो सुनिए और दोहराइए।
1: और अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनने के बाद उत्तर दोहराइए।
0: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आप जापानी भाषा सीख रहे हैं, तो इसे जापानी में कैसे बोलेंगे? जापानी भाषा के लिए शब्द है
5: निहोंगो।
0: सीखना या पढ़ाई करना को जापानी भाषा में कहते हैं
5: बेंक्यो सुरु,
0: और इसका ते रूप है
5: बेंक्यो शिते।
0: तो कोशिश कीजिए।
6: निहोंगो बेंक्यो शिते इमासु।
1: अब मान लीजिए आपको कहना है कि आप काम कर रहे हैं। काम के लिए जापानी शब्द है
5: शिगोतो।
1: करना है
5: सुरु
1: और इसका ते रूप है
5: शिते।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: शिगोतो शिते इमासु।
0: अब बारी है संबंधित शब्द सीखने की, जिसमें आज हम गिनती करने के एक विशेष तरीके के बारे में बता रहे हैं।
1: इस तरीके का उपयोग ऑर्डर देते समय किया जा सकता है। आमतौर पर जापानी भाषा में एक से पांच तक की गिनती होती है इची, नी, सान, योंग और गो। लेकिन ऑर्डर देते समय इस्तेमाल की जाने वाली गिनती अलग है। आप भी सुन लीजिए एक से पांच तक की गिनती।
0: एक,
5: हितोत्सु।
0: दो,
5: फुतात्सु।
0: तीन,
5: मित्सु।
0: चार,
5: योत्सु।
0: पांच,
5: इत्सु।
1: अब ये गिनती एक बार और सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
5: हितोत्सु, फुतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सु।
0: आज की बातचीत में महिला पर्यटक तीन सोबा नूडल्स ऑर्डर करना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने कहा
5: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
0: अगर दो ऑर्डर करने हो तो आप क्या बोलेंगे?
5: ओसोबा फुतात्सु ओनेगाई शिमासु।
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: ओसोबा मित्सु ओनेगाई शिमासु।
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: आज की बातचीत में सोबा नूडल्स का जिक्र था, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंश काइतो के साथ खाना पीना, जिसमें हम बताएंगे सोबा यानी कुट्टू के आटे के नूडल्स के बारे में।
1: सोबा जापान के पारंपरिक और लोकप्रिय नूडल्स हैं। ये कुट्टू के आटे से बनते हैं। इन्हें आप ठंडा भी खा सकते हैं सोया सॉस वाला रसा लगाकर, या फिर गर्म भी खा सकते हैं हल्के जायके वाले सूप में डालकर।
0: जापान में सोबा नूडल्स के रेस्तरां हर जगह मिल जाते हैं। बाजारों में भी इनकी बहुत सारी दुकानें होती हैं और रेलवे स्टेशनों के आसपास भी।
1: यहाँ तक कि रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा की दुकानें होती हैं, जहाँ यात्री रेलगाड़ी पकड़ने से पहले जल्दी से पेट पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में मिया हारुसान हाउस के बाकी निवासियों को अपनी यात्रा के बारे में बताएगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी हुकूमत ने 1 जुलाई से गैर मुल्की शहरियों के लिए वीज़ा फीस 5 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। हुकूमत ने जुमे के रोज काबीना इजलास में इस नजरसानी की मंजूरी दी। वीजा जारी करने की मुल्की फीसों में तकरीबन 50 साल से कोई तब्दीली नहीं की गई थी। सिंगल एंट्री वीजा फीस मौजूदा 3,000 येन से बढ़कर 15,000 येन या तकरीबन $93 हो जाएगी। मल्टीपल यानी मुकर्रा मुद्दत में मुतअद्दिद बार जापान आने की इजाज़त के हामिल वीज़ों के इजरा की फीस 6,000 येन से बढ़ाकर 30,000 येन या तकरीबन $186 कर दी जाएगी। वजीर खारजा मोतेगी तोशीमित्सू ने नामानिगारों को बताया कि मौजूदा वीज़ा फीसें 1978 में मुकर्रर की गई थी और कीमतों में इजाफे और गैर मुल्की करेंसी की शराह मुबादला में तब्दीलियों के जवाब में इन पर नजरसानी की गई है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि उनके मुल्क के ड्रोन हमले ने सरहद से 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर रूस की एक तेल तंसीब को निशाना बनाया है। जेलेंस्की ने हफ्ते के रोज एक वीडियो खिताब में कहा कि यह तंसीब मगरबी साइबेरियाई खित्ते ट्यूमेन में वाके है। सदर ने इंकशाफ किया कि हमले में यूक्रेन की दिफाई कंपनी के तैयार करदा अपग्रेडेड ड्रोन शामिल थे। उन्होंने कहा कि बगैर पायलट की ये फजाई गाड़ियां 3,000 किलोमीटर दूर हदफ तक पहुंच सकती हैं। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यह हमला यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों का मुकम्मल जायज जवाब था। उन्होंने इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी ऐलान किया कि यूक्रेन ने जनूबी खित्ते क्रीमिया में तेल के डिपो समेत आदाफ को निशाना बनाया। रूस ने 2014 में यकतरफा तौर पर इस खित्ते को अपने साथ मिला लिया था। यूक्रेन ने जुमरात को मॉस्को में एक ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया था। जापान की टीम ने मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में अपने ग्रुप मरहले के दूसरे मैच में ट्यूनिस के खिलाफ 0 के मुकाबले में 4 गोल से शानदार फतह हासिल कर ली। हफ्ते के रोज मेक्सिको के मोंटेरी स्टेडियम में शुरू होने वाले ग्रुप एफ के खेल में जापानी टीम, जो आलमी रैंकिंग में 18वें नंबर पर है, उसका मुकाबला 45वें नंबर की ट्यूनिस की टीम से हुआ। चौथे मिनट में नाकामुरा केतो ने बाएं जानिब से गेंद को क्रॉस किया और कामादा दाइची ने उसे अपने बाएं पांव से गोल में डालकर जापान को इब्तदाई बर्तरी दिला दी। 31वें मिनट में उएदा आयासे ने दरमियानी फासले के एक ताकतवर शॉट के जरिए हाफ टाइम से पहले जापान की बर्तरी को दुगना कर दिया। जापान ने दूसरे हाफ में भी खेल पर गिरफ्त बरकरार रखी। इतो जूनिया ने 69वें मिनट में एक और गोल किया। फिर उवेदा ने 83वें मिनट में दाएं जानिब से क्रॉस पर हेड करके जापान की जानिब से चौथा गोल कर दिया। जापान 3 पॉइंट्स हासिल करके पहली बार जीत गया है। इस तरह नेदरलैंड के खिलाफ मैच ड्रॉ होने के बाद जापानी टीम के इस ग्रुप में मजमूई तौर पर 4 पॉइंट्स हो गए हैं।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां समाप्त फरमा लीजिए। कतर और पाकिस्तान के मुताबिक उन मुजाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है जो उन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई के खात्मे के मुआहदे पर सालिसी के लिए किए हैं। मुफाहमत की एक याददाश्त के तहत अमरीका और ईरान ने 60 दिनों के अंदर किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुजाकरात पर इत्तफाक किया है। आला सतह मुजाकरात का पहला दौर स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में इतवार से पीर तक मुनक्किद हुआ। सालिसों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मुजाकरात मुस्बत और तामीरी माहौल में हुए। इसमें कहा गया है कि फ्रीकैन ने जोहरी मसाइल और ईरान के खिलाफ पाबंदियों पर तवज्जो मरकूज करने वाले अमली ग्रुपों की क्यादत के लिए आला सतही कमेटी के क्याम पर इत्तफाक किया। और जापान की हुक्मरान जमातें पॉलिसी एजेंडे को अमली जामा पहनाने की कोशिशें दुगना करने का इरादा रखती हैं, क्योंकि पार्लिमानी इजलास खत्म होने में वक्त कम रह गया है। जापानी हुकूमत ने 1 जुलाई से गैर मुल्कियों के लिए वीजा फीस 5 गुना बढ़ाने का फैसला कर लिया है। खबरें खत्म हुईं।

0: जी हाँ, शो काइश ते इमास यानी मुतारिफ करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ। दरअसल फेल शो काइश शुरू यानी मुतारिफ करवाना की ते शक्ल शो काइश ते के बाद इमास लगाकर बनाया गया है। अब जापान में अपनी सरगर्मियों के बारे में बताने वाला एक मकालमा सुनिए।
1: ड्योको देस का हाय आज कुछ ड्योको स्टे इमास।
0: और अब मकालमे की तशरी।
1: ड्योको देस का
2: क्या आप सफर कर रहे हैं?
0: ड्योको एक इस्म है जिसके मायने है सियाहती या तफरीही सफर।
1: हाय आज कुछ ड्योको स्टे इमास।
2: जी हाँ, इधर उधर सफर कर रहा हूँ।
0: हाय यानी जी हाँ, और अच्छी कोची के मायने है इधर उधर।
2: तो सामेन सुनिए और दोहराइए। सामेन अब मुकालमा सुनिए और जवाब दोहराइए।
3: ड्योको देस का हाय अच्छी कोची ड्योको स्टे इमास। हाय अच्छी कोची।
0: आप जापान में मजीद जो कुछ कर रहे हैं उसके बारे में बताने की मशक कीजिए। मसलन आप जापानी जबान सीख रहे हैं तो ये बात आप कैसे बताएंगे? जापानी जबान को कहते हैं
3: निहोंगो। निहोंगो
0: सीखना की जापानी है बेंक्यो सुरु, और उसकी ते शक्ल है
3: बेंक्यो शिते। बेंक्यो शिते।
1: निहोंगो बेंक्यो शिते इमास। निहोंगो बेंक्यो शिते इमास।
0: और अगर आप काम कर रहे हो तो कैसे बताएंगे? काम को जापानी में कहते हैं
3: शिगोतो। शिगोतो
0: करना की जापानी है सुरु, और इसकी ते शक्ल है
3: शिते। शिते।
0: तो सामेईन कोशिश करें।
4: शिगोतो शिते इमास। शिगोतो शिते इमास।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम गिनती का एक खुसूसी तरीका बता रहे हैं।
2: जापान में कोई चीज ऑर्डर करते वक्त आम गिनती यानी इची नी सान इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये गिनती इस्तेमाल होती है
0: एक, हितोत्सु, दो, फतात्सु, तीन, मित्सु, चार, योत्सु, पांच, इत्सुत्सु।
2: एक से पांच तक ये गिनती दोबारा सुनिए और दोहराइए।
3: हितोत्सु, फतात्सु, मित्सु, योत्सु, इत्सुत्सु।
0: आज के मकालमे में सयाह जोड़े की खातून ने तीन अफराद के लिए सोबा नूडल्स का यूं ऑर्डर दिया था, ओ सोबा मित्सु ओ नेगाई शिमास। अगर आप दो सोबा मंगवाना चाहें तो किस तरह कहेंगे?
3: ओ सोबा फुतात्सु ओ नेगाई शिमास।
2: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए।
5: ओ सोबा मित्सु ओ नेगाई शिमास।
2: हाय
5: 日本へは観光ですか？
6: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
7: それは素晴らしいね。
2: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: アラブカーニクショキンカイト系マシュフルンカカーナー。アシカモズソバヘ。
0: सोबा जापान का एक मकबूल रिवायती खाना है। सोबा नूडल्स या गंदम के आटे से तैयार किए जाते हैं। इन्हें उबालकर सोया सॉस वाले ठंडे सूप में डिबोकर या हल्के जायके वाली गर्म यखनी के प्याले में डालकर खाया जाता है। वैसे हीरा, जापान आकर आपने सोबा नूडल्स तो यकीनन खाए होंगे।
2: जी यकीनन, टेम्पुरा वाले सोबा नूडल्स मुझे बहुत पसंद है। वैसे जापान में जगह जगह सोबा रेस्टोरेंट पाए जाते हैं, तकरीबन हर शॉपिंग मॉल में कई होते हैं। इसके अलावा ये अक्सर ट्रेन स्टेशनों के करीब भी होते हैं,
0: बल्कि कई रेलवे स्टेशनों के अंदर भी सोबा रेस्टोरेंट होते हैं जहां मुसाफिर ट्रेन के इंतजार के दौरान सोबा खा सकते हैं।
2: अच्छा अनवर साहब, सोबा के हवाले से एक बात बहुत हैरत अंगेज है।
0: अच्छा वो क्या?
2: जापानी लोग सुरप सुरप की आवाज़ के साथ सोबा नूडल्स को मुंह में खींचते हैं। अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, लेकिन शुरू में मुझे आवाज़ बहुत अजीब लगती थी।
0: जी ये बात अक्सर गैर मुल्कियों को अजीब लगती है, लेकिन जापान में सोबा खाने का यही दुरुस्त अंदाज है। दरअसल इस तरह खींचने से नूडल्स के साथ कुछ हवा भी मुंह के अंदर दाखिल होती है, जिससे सोबा